0: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
1: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
2: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
3: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
4: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
3: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
4: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगा हर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेक। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, जहां सुबह की शुरुआत होती है सकारात्मक सोच, खूबसूरत बातों और अपनेपन के साथ। जी दोस्तों, और आज के इस सुहानी सुबह में आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज की सुबह की शुरुआत बहुत ही प्यारी सी भक्तिमय रही होगी आप सभी की माँ की भक्ति के साथ। चारों ओर माता रानी के जयकारे, मंदिरों में गूंजती घंटियों की आवाज़, घरों में जलती अखंड ज्योति और भक्ति संगीत से सजा वातावरण, नवरात्रि का पर्व अपने साथ एक अलग ही ऊर्जा और विश्वास लेकर आता है। जी दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2026 का दिन है और आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जो आने वाले 9 दिन हैं माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप में जो है आप

माँ की पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये भक्तिमय वातावरण जो है आपके घर में सुख और शांति लेकर आए। माँ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहे, आप सभी के घरों में शांति बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं और नवरात्रों की शुरुआत करते हैं। और साथ ही दोस्तों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में भी हम एक प्यारे से माँ के भजन के साथ, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, भक्तिमय वातावरण के साथ और श्रद्धा और एक लगन के साथ माँ के चरणों में अर्पित ये माँ के लिए 9 दिन। तो इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं मौसम की ओर, मौसम की अपडेट की ओर। तो इस समय आप सभी को बता दें धर्मशाला के तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं। और आंखों देखा हाल आप सभी को बताऊं तो बिल्कुल ऐसे काले काले से बादल जो है वो छाए हुए हैं और हल्की हल्की से बारिश भी लगी हुई है और साथ ही बिजली गरजने की भी आप सभी जो है वो हाल देख ही रहे होंगे जो धर्मशाला के लोग हैं। तो दोस्तों ये है आंखों देखा हाल और बहुत ही भयानक वाला रौद्र रूप जो है एक तरह से मौसम ने ले लिया है। और ऐसे में किसानों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब खेती का काम चल रहा होता है, लेकिन क्या करें, मौसम के साथ ये प्रकृति की एक हमारे लिए कह सकते हैं ना दोस्तों कि इसके साथ ही हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और मौसम खैर सबके साथ देता भी है, सबके बारे में सोचता भी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पेशेंस जो है हमें बनाए रखने चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अपडेट की बात करें तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम के तेवर बिगड़ने वाले हैं। 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अगले 6 दिन तक जो है मौसम में उतार चढ़ाव बना रहने का अनुमान है। तो बिल्कुल शांतिप्रिय जो है आप खेती का भी काम करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि फिर जब एक बार शुरू कर देते हैं हम तो फिर बारिश हो जाए तो सारी उथल पुथल हो जाती है और काम जो है वो सारा बिगड़ जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों इसी अपडेट के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों 91.2 मेगा हर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे थे गुड मॉर्निंग धर्मशाला जी। दोस्तों अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि अभी तो शुरुआत हुई थी और अभी इंजॉय कर रहे थे वाली बात आ गई। तो बिल्कुल दोस्तों मौसम का हाल ही इस तरह से है कि लाइटनिंग हो रही है, बिजली जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ से हमें ध्यान में मतलब सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान देते हुए रेडियो को कुछ समय के लिए बंद करना होगा, जिससे कि आपका जो ये मनोरंजन का सिलसिला है मौसम साफ होने के बाद जो है फिर से अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ आप तक पहुंचता रहे जी। दोस्तों तो फिलहाल के लिए जो है माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि मौसम की वजह से कुछ समय का ब्रेक जो है हमें लेना होगा। तो मिलते हैं आप सभी से मौसम साफ क्लियर होने के बाद। तब तक आप सभी अपने काम एंजॉय कीजिए, या तो फिर छुट्टी वाला दिन है आराम कीजिए, अपनी फैमिली के साथ सो जाइए, क्योंकि और क्या ही कर सकते हैं बारिश में जी। दोस्तों तो दीजिए अनुमति फिलहाल के लिए रुचिका को आप सभी के प्यार भरे नवरात्रि के इस पावन त्यौहार पर।

इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और थोड़ा सा मौसम जो है वो क्लियर हुआ है, तो अब फिर से एक बार आप सभी के साथ जुड़ चुके हूँ दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ। थोड़ा सा ब्रेक था कुछ समय के लिए, क्योंकि मौसम के हाल जो थे वो बहुत ही ख़राब दिखाई दे रहे थे, और ऐसे में हमें सेफ्टी सबसे पहले देखनी चाहिए दोस्तों, फिर वो चाहे खुद की हो चाहे रेडियो की हो, क्योंकि अगर रेडियो को कुछ हो गया तो सोचिए आप फिर कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे जो है अपने दिन को और ज़्यादा प्यारा बनाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आज तो वैसे भी बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा दिन है, पावन भक्तिमय दिन है, माँ के आशीर्वाद का दिन है जी दोस्तों। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही आज के दिन एक और ख़ास बात है, एक तरफ माँ हमारे घर में जो है वो आई हैं और दूसरी तरफ आज के दिन जो है यानी कि 11 अक्टूबर 2026 के दिन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बेटियों के लिए सुनहरा अवसर जी दोस्तों। तो बेटियों की अहमियत ज़िंदगी में कितनी है ये तो आप सभी जानते हैं। फिलहाल ये बातचीत का सिलसिला आप 11 बजे तक आप सभी इंजॉय करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले इंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही बारिश भी एंजॉय कर रहे हैं जी दोस्तों। और जैसे कि इस प्यारे से खूबसूरत से गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि आज के दिन बहुत खास जो है, कुछ खास बातें हैं जुड़ी हैं आज के दिन से। यदि हम इतिहास में थोड़ा सा जाकर देखें, यानी कि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, तो हर साल दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ये खास दिन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दुनिया भर की लड़कियों का सम्मान करने, उनकी आवाज़, कार्यों और नेतृत्व को सशक्त बनाने का एक वैश्विक अवसर है। ये उन सभी लोगों का है जो लड़कियों और उनके अधिकारों की परवाह करते हैं। इस दिन हम सभी मिलकर लड़कियों के अधिकारों के सभी पहलुओं को मान्यता देते हैं और उनकी वकालत करते हैं जी दोस्तों। जहां लड़कियां आज अपने घर में ही, बच्चे जो हैं घर पे ही सुरक्षित नहीं हैं, खास करके हम लड़कियों की ही बात करें, तो जो समय है बहुत ही अजीबोगरीब सा जो है वो सभी के साथ चल रहा है दोस्तों। पहले घर वालों के पास बच्चों को सेफली छोड़ा जाता था, लेकिन आज के समय में हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और इस विश्वास के लिए धर्मशाला की ही बात है दोस्तों, न्यूज़ है ये। एक बच्ची जो अपने नाना के घर रहती थी और उसके साथ वहीं नाना के द्वारा ही जो है दुर्व्यवहार की बात जो है वो सामने आई थी, कुछ समय पहले की बात है। तो देखिए आज रिश्तों की जो एक कह सकते हैं कि समय जो है वो कहाँ जा रहा है, किस दौर जा रहा है। ऐसे तो हम कहते हैं कि रिश्तों में मजबूती बनी रहनी चाहिए, विश्वास बना रहना चाहिए, रिश्ते तभी निभाए जाते हैं जब विश्वास हो। लेकिन आज के समय में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, किस तरह से हम रिश्तों की अहमियत को समझते हैं, किस तरह से उनका सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं, इन्हीं बातों से देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, हम किसी एक को लेकर सभी को एक समान नहीं कह सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों की इज्जत करते हैं, लड़कियों को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो ये आज का दिन बहुत खास है दोस्तों। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, बहुत सारी बातें करेंगे जितना समय हमारे पास है, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

बिल्कुल दोस्तों, और आज का दिन उन परिवारों के लिए बेहद खास होगा जिनके घरों में अभी अभी नन्ही सी परियों ने जन्म लिया है और घर की रौनक को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जी दोस्तों, बेटियों की रौनक ही अलग होती है। कुछ समय के लिए वो अपना बचपन वहाँ जो है बिताती हैं और बहुत सारी यादें जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ जाती हैं और उसके पास जो है एक नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है बेटियों को फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों, कहने के लिए तो एक छोटा सा शब्द है बेटी, लेकिन बचपन से लेकर पूरी जिंदगी भर जो है उन्हें बहुत से ऐसे पड़ावों से गुजरना पड़ता है, बहुत संघर्ष जो है उन्हें करना पड़ता है जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये तो है दोस्तों आज के दिन की बात, और थोड़ा सा नज़र डालते हैं हमारे आसपास की कुछ और ख़ास बातों पे भी, जहां हम यहां अपने घरों में बैठकर आराम से बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और जो है चुपचाप घर के सभी मेंबर्स के साथ हम इस टाइम को और ज़्यादा प्यारा बना रहे हैं। वहीं आप सभी जानते हैं कि देश के बहुत सारी ऐसी जगहों में जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और क्या मुद्दा इस समय चल रहा है इससे भी आप सभी वाकिफ होंगे। दोस्तों, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ जो है वो ज़्यादातर हिस्सों में राजधानी नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है वो जमकर बवाल हुआ। जी दोस्तों, आप जब भी जानते हैं कि कल 10 अक्टूबर का दिन था और कल के दिन जो था बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने का जो है एक तरह से आग्रह किया गया था जेएनजी की तरफ से, सीजेपी की तरफ से। तो देखा गया कि बहुत सारे रेलवे स्टेशंस जो है थे वो बंद कर दिए गए जिससे कि बच्चे वहाँ तक पहुँच ना सकें, और जो उस टीम के लीडर थे उन्हें भी किसी को फ्लाइट से ही डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, तो किसी को घर से डिटेन कर लिया गया। तो इस तरह का माहौल जो है वो फ़िलहाल चल रहा है दोस्तों। तो देखते हैं किस तरह से ये जो है और ज़्यादा चीज़ें संभलती हैं या किस मोड़ की ओर जाती हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो है हमें सोचना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये मुद्दा चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ा सा हमें अपनी आंखों की पट्टी को हटा कर इस विषय पर जो है वो सोच विचार करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो क्या बच्चों की जो आवाज़ है वो सही है या गलत है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, वोट चोरी को लेकर जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं, और देखते हैं किस और जो है ये रुख करती है बातचीत या किस तरह और जो है ये माहौल जाता है। फिलहाल जो बच्चों का गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो अपडेट है दोस्तों आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। वैसे तो आप सभी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, हर अपडेट आप सभी तक समय समय के साथ जो है वो पहुंचती रहती है रील्स के माध्यम से, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम का जो समय है वो ज़्यादा चल रहा है। तो ये है कुछ अपडेट दोस्तों, कुछ खास बातों की। फिलहाल आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

तो 91.5 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला. इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, प्यारे से खूबसूरत से दिन के शुरुआत के साथ. दोस्तों, तो आज के दिन हम बात कर रहे हैं बेटियों की सुरक्षा की और खास करके बेटियों के अधिकारों की. तो जहां आज भी जिन घरों में बेटी को बोझ समझा जाता है, हो सकता है रीजंस कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों बेटियों के लिए जो कहते हैं ना कि बच्चा अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में आता नहीं है, पेरेंट्स मर्जी के हिसाब से उन्हें इस दुनिया में लेकर आते हैं और फिर बाद में अगर उन्हें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़े, खास करके बच्चों को, तो उनकी उसमें क्या गलती होती है. खास करके बेटियों की बात करें तो दोस्तों बेटियों की ज़िंदगी में इतना संघर्ष होता है, समाज के ताने, घर की बातें, न जाने कितनी ही उन्हें जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. वही बात आ जाती है कि समाज क्या कहेगा, वो अगर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहें तो वो जी नहीं सकती, कि चार लोग क्या कहेंगे, उन्हें इस बात से जूझना पड़ता है कदम कदम पे. तो सोचिए किस तरह से उनके मन में बातें बीतती होंगी कि उनके पेरेंट्स जो है वो, या उनकी फैमिली ही उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, या उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, वहाँ भेदभाव किया जा रहा है कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाती, लड़कियाँ जॉब नहीं करती, घर का काम. खैर, आज के समय में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारे लोगों की सोच जो है वो बदल रही है धीरे धीरे. लेकिन कहने की बात यही है, यदि सोच बदल गई है तो फिर क्यों ये चीज़ें सामने आती हैं. अभी पीछे जैसे एक न्यूज़ और सामने आ रही है कि एक माँ ने ही अपनी बच्ची को कुछ समय तक जो है कंबल में उसका मुँह दबा कर रखा, क्योंकि वो बेटी थी, उन्होंने बेटे की चाह में जो है वो यहाँ तक पहुँचे थे. लेकिन आगे जाकर देखा तो बेटी ने जन्म लिया. तो एक माँ ने ही अपनी बेटी को जो है इस दुनिया से विदाई दे दी. तो सोचिए दोस्तों, फिर हम कह तो रहे हैं कि सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, यदि बदल रहे हैं तो फिर ये चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं. ये चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं कि किसी की बेटी को दहेज के लिए चला दिया गया, किसी की बेटी को टॉर्चर कर करके मार दिया गया, वो भी ससुराल में. तो जहाँ वो बहू बनकर गई है तो उससे पहले वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है. बहुत सारे रिश्ते एक महिला के साथ जुड़ते हैं, एक लड़की के साथ जुड़ते हैं. तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए. ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि इस पर हम अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचा सकें. फ़िलहाल दोस्तों आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और बातों के साथ साथ मनोरंजन बेहद ज़रूरी है. तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत.

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी वापस आ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, और इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, बातचीत के साथ साथ कुछ खास जानकारियों की ओर रुख करना बेहद ज़रूरी है, और आप सभी जानते हैं कि मेंटल कल के दिन जो है वो मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है एक तरह से हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन पूरा जो ये माह है वो भी पूरी तरह से इस पे अवेयरनेस से रिलेटेड जो है हम इसे मना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जो है एक छोटी सी बातचीत हर दिन आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के मनोविज्ञान विभाग की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। लिव्ड एक्सपीरियंस, रियल वॉइसेस, रियल चेंजेस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक, रचनात्मक और जागरूकता संबंधी गतिविधियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का संदेश दिया। जी दोस्तों, और मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो कल जो है हम एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट प्रियशी मैम के साथ जुड़े भी थे, बहुत सारी बातें उनके साथ जो है हमने की, आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश थी, और उम्मीद है कि आप सभी को कुछ कुछ सवालों के जवाब जो है वो ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि थोड़े से समय में थोड़ी सी बातें ही कवर की जा सकती हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो इससे तो हमारी पूरी ज़िंदगी जुड़ी है। तो सोचिए कितनी सारी बातें हमें पूरे दिन में ट्रिगर करती होंगी, कितनी बातें जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती होंगी। एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर एक बात जो है वो असर करती है। जब भी कोई बात, कोई अगर हमें कुछ बुरा बोल दे, कोई बात अच्छी भी बोल दे, फिर भी हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं। और आज के समय में आप सभी देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं वो तनाव से ग्रसित हैं, तो वो भी किसी न किसी वजह से है दोस्तों। तो ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है किस तरह से बिगड़ रहा है, किस तरह से ये जो कोई प्रॉब्लम्स इसमें फेस हो रही हैं, इस पे काम करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हम किसी से एडवाइस लेंगे तो शायद वो गलत राय होगी या हम नहीं ले सकते, ये कोई बीमारी नहीं है, इस पे हम ना तो दवाई लेंगे ना तो हम एडवाइस लेंगे, लेकिन कई बार कोई जब हमें सुनते हैं, जो हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस पर कुछ निष्कर्ष यदि हमारे तक पहुंचाने लायक हो तो वो एक्सपर्ट्स ही हमें बता सकते हैं। हर कोई हमारी बात को ध्यान से सुने और उसमें से जो है हमें अच्छाई के लिए प्रेरित करे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना। तो दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स ही इस बात को समझ सकते हैं, और उन तक पहुंचना, यदि हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, यदि हमें लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां या कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में शुरू हो रही है, एंटर कर रही है, तो हमें एकदम से जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो उससे जो है हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, या आपको सही लगे डॉक्टर के पास जाना कि कहीं भी किसी भी तरह से, लेकिन हाँ काउंसलिंग सेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं उस समय में यदि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी बातें हैं तो ये छोटी कैसे हो सकती हैं। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत। आप सभी तक पहुँचा रही हूँ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से आपके अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ बहुत खास खास जानकारियां भी आप सभी तक पहुंचा रही हूं। तो आइए दोस्तों एक और खास जानकारी की ओर रुख करते हैं। दोस्तों कांगड़ा घाटी रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगेज रेल सेक्शन पर अस्थायी रूप से बंद की गई ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रैक को सुरक्षा मानकों के अनुरूप ट्रेन संचालन के लिए फिट पाए जाने के बाद जो है वो नैरोगेज ट्रेनों का परिचालन दोबारा से शुरू किया जाएगा रविवार से। जी दोस्तों रेलवे के इस निर्णय से पठानकोट कांगड़ा ज्वालामुखी रोड बैजनाथ पपरोला और जोगिंदरनगर सहित रेल मार्ग के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी। जी दोस्तों तो ये जो है एक बहुत खास जानकारी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रेल से जो है ट्रैवल करते हैं, सभी बस से या अपनी व्हीकल से ट्रैवल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए रेल जो है एक सुविधा होती है बहुत, क्योंकि इसमें आप सभी जानते हैं थोड़ा सा कंसल्टेशन होता है दोस्तों और बहुत अच्छा भी लगता है सबके साथ ट्रैवल करना अपनी व्हीकल में। तो आज के समय में देखिए अपनी अपनी व्हीकल के चलते ही तो आज रोड में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है कि क्या ही बोले, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कहीं क्या हो रहे हैं, कोई रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो कोई जाने अनजाने में ही, कोई तो पैदल चलते चलते भी सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, जो हुड़दंग बाद जो है वो सड़क पर निकलते हैं तो उनकी वजह से। तो हम जब भी सड़क पर निकलें तो थोड़ा सा हमें केयरफुली जो है ड्राइव करना चाहिए। एक तो ड्रिंक करके कभी ड्राइव ना करें, हेडफोन्स पहनकर कभी ड्राइव ना करें और हुड़दंगबाजी तो बिल्कुल ना करें क्योंकि हम खुद को तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते, अपने परिवार को भी पहुंचाते, लेकिन साथ ही बहुत सारे हो सकता है शायद दूसरे लोगों को भी जो सड़क पर चल रहे होते हैं तो उन्हें बिना वजह ही हमारे उस हुड़दंगबाजी का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

तो सही क्या अनुदेश में लव्ड ओमेगा हर्ट्स पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही अहमियत रखता है, खास करके लड़कियों की जिंदगी के लिए और ख़ास करके उन पेरेंट्स के लिए जो आज बेटी को एक समान अधिकार देते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें हर कदम पे करते हैं। जैसे लड़कों के साथ किया जाता है दोस्तों, लड़कों की गलतियों को भी अनदेखा किया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनकी एक छोटी सी गलती पे भी उन्हें 100 बातें कई बार जो है वो सुना दी जाती हैं। तो उसी तरह से यदि हम लड़कों के साथ भी करें तो शायद ये जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो लड़के बिना सोचे समझे किसी की भी बेटी के साथ जो है वो एक तरह से दुर्व्यवहार करते हैं चलते चलते जाने अनजाने, या फिर ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो सामने आती हैं। तो जहाँ बेटियाँ घर में ही अपने आप को थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर पाती हैं, सुरक्षित फील नहीं कर पाती हैं, तो बाहर उन्हें कदम रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनका जो विश्वास है वो बन पाना किसी पे वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो घर पे ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे कि वो बाहर कंफर्ट जोन ढूंढें और किसी गलत इंसान के संपर्क में जाएं और फिर ज़िंदगी भर जो है उन्हें उस बात का पछतावा जो है वो साथ में रहे। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों हमेशा जो है वो ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लड़की होना कभी भी ये तय नहीं करना चाहिए कि आप क्या कर सकती हैं, कहाँ जा सकती हैं या क्या बन सकती हैं। फिर भी दुनिया भर की लाखों लड़कियों के लिए ये आज भी मायने रखता है। बहुत से लड़कियाँ आज भी भेदभाव, हिंसा, गरीबी और संघर्ष का सामना कर रही हैं जो उनके अधिकारों को छीन लेते हैं, उनके विकल्पों को सीमित कर जो है वो सीमित कर देते हैं और उनके अवसरों को संकुचित कर देते हैं। दोस्तों लड़कियों में निवेश करना स्वस्थ परिवारों, मजबूत समुदायों और अधिक लचीले समाजों के निर्माण का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियां पीछे छूट रही हैं। किस वजह से? हमारी मानसिक सोच की वजह से। तो यदि हर एक इंसान अपनी मानसिक सोच को बदले तो शायद आज बेटियां जिस तरह से देश का नाम गर्वान्वित कर रही हैं, हर एक बेटी अपनी लगन और जुनून के साथ आगे बढ़ सके किसी भी बिना भेदभाव के।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला को एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो बहुत कम समय जो है वो बातचीत के लिए हमारे पास जो है बचा है दोस्तों, लेकिन बातें बहुत सारी होती हैं, क्या करें, खासियत ही इतनी है। एक तो आज के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की, और माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना में, भक्ति में आप सभी जो है आनंद में से भरे हुए हैं, और माँ के आशीर्वाद से जो है ज़िंदगी की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल दोस्तों आप सभी के लिए, क्या हम सभी प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे घरों में, हमारे जो है मन में सुख शांति जो है इसी तरह से बनी रहे, और मैं तो ये भी प्रे करती हूँ कि आप सभी का साथ जो है इसी तरह से बना रहे अपने इस बहुत ही प्यारे से रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, क्योंकि आपका साथ है तभी ये जो है बहुत महान है, अदरवाइज तो फिर दोस्तों क्या ही है ना, आप सभी जानते हैं। खैर, तो आइए दोस्तों, और बेटियों के लिए भी एक बहुत खास दिन है आज का, ये उनके अधिकारों के लिए, तो बेटियों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन हाँ, हर एक बेटी जो है, हर एक लड़की जो है वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, और चाहे वो घर हो, चाहे वो घर से बाहर, समाज की बात हो, देश की बात हो, विदेश की बात हो, कहीं भी हम जाएं तो हम खुद अगर रिस्पेक्ट किसी को देंगे, सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं तो वहाँ आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों के प्रति जो है वो जागरूक हो जाइए, तभी आप आवाज़ उठा पाएंगे और अपने हक की लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो आइए जाते जाते एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक।

बिल्कुल दोस्तों, मौसम ही ऐसा है कि सोने का ही मन कर रहा है जब बारिश लगी हो और हल्की हल्की सी सर्दियों का ये जो मौसम है दोस्तों, ठंडक भरा। तो ऐसे में हमें सेहत का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन साथ ही ये जो प्यारे प्यारे से पल हैं जो कि हम अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं इन छुट्टी के दिन, तो ज़रूर इन पलों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए और ज़्यादा प्यारा बनाइए। और समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो फिलहाल अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: चालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
2: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी।
2: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
2: अच्छा,
0: काका लड्डू खाओ।
3: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ की नौकरी?
0: बैंक में काका।
4: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
5: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
4: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
6: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
5: क्यों भाई?
6: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
5: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
7: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?

0: केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
0: स्मार्ट गर्ल।
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
4: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
6: जीजा तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर।

तो श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आते।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक।

0: केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
0: स्मार्ट गर्ल,
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा,
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं।
4: दोस्तों 91.2 ओमेगा हर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और मौसम जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद करवट बदल रहा है, उतार चढ़ाव जो है वो आ रहे हैं जी दोस्तों, और बिजली भी गरज रही है। तो ऐसे में थोड़ी समय के लिए जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता है रेडियो को थोड़े समय के लिए हमें बंद करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कुछ समय के लिए आप सभी को डिस्टर्बेंस रहेगी एक तरह से, जो इंजॉय कर रहे हैं। फिर से जैसे ही मौसम साफ होता है तो आप सभी फिर से कंटिन्यूटी के साथ, मनोरंजन के साथ इंजॉय करेंगे अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।

0: अरे बेटी, तुम भी कुछ बोलो।
1: जी, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

0: एक अगर शालू बात माने ना तो करवा ले।
1: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
0: अरे वाह, नौकरी लग गई
1: जी।
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
1: अरे काका भी है।
0: अच्छा चल,
1: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
1: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
1: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
1: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ,

0: हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
1: कौन था?
0: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
0: स्मार्ट गर्ल।
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा,
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
4: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्कार श्रोताओं, एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अनुस हो तो है सब हूँ करते हिन आर जे सचिन कपूर सो गीता मित्रों श्रोताओं और एक बढ़िया सिरे गला अब जो कोई त्राय जिगरी ठूंजा मिनटा पर ही यानी कि त्राय मिनट पहले किया सो इन दाख बड़े हल्के दे श्रोता के न सो कॉल करू कर दे थी इस लाइव कार्यक्रम वह सोचे करी का जो कि पूरे चूर बजे शुरू बंदा था सो पुछू कर दे थी कि तू सु रेडियो मंच किया सो कह नहीं ना हाँ तो यह सब किया सो बड़ा इंजॉय कर करते थे तैयारी गल्ला जो कि वाकई में कि कितनी एक्साइटमेंट की है सो रेंदे इन दे श्रोता जो और खासकर इन दे हल्के हल्के श्रोता जो कितनी एक्साइटमेंट रहते कि कहने की है सो रेडियो लगना है और कहने इन दा गादा कार्यक्रम की है सो लगना है श्रोताओं तो बहरहाल इन दा गादा कार्यक्रम की है सो लगी पे और श्रोताओं और 5 बजे तक रह सुखिया सो बिल्कुल लाइव रहना हाँ तुस हो गए और धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी श्रोता हूँ करते हैं कि इस कार्यक्रम जो प्यार देने वास्ते और खासकर जो है गुंजन धर्मशाला रे फेसबुक तो लाइव इन दिन तह लाइव रील जो इतना प्यार देने वास्ते जो अज में ये रेख कि 45,000 भी क्रॉस किया सो करी गई हाँ तो थैंक यू सो मच जी और तुंदा प्यार आशीर्वाद की असो असू पर सभी पर की असो ये बने रहे शोतों और तुंदा प्यार और तुंदा आशीर्वाद की असो असू वास्ते अक दसी सकते है कि अक बोन भी डरा काम की असो करता असो एनर्जी दिंदा हा एनर्जेटिक किया सो बनंदा हा शोतों तो जनाब तो सब जरूर हो गए जुड़ सकते हैं कॉल कर सकते हैं 7018 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर कर लो हाँ 7018 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से हो नहीं सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी और वो की साझा कर सकते हैं यह गलारा विशेष ध्यान रहे श्रोताओं की जानकारी किया तुंदे इलाके री भुआ तुंदे ग्रां री भुआ और जानकारी किया सो बिल्कुल रेडियो मंच होने लायक भुआ दसने लायक भुआ साझा करने लायक किया सो भुआ तो धर्मशाला रा मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा किया सो पूछी गो शो तो हालांकि आई थिंक मतलब 12 बजे रे करीब किया सो बरखा लगातार लग रही है ना 1 बजे बाद किया

सेल्सियस टेम्परेचर की असो इस समय एग्जैक्टली दसो गर्दन के तापमान की असो धर्मशाला में बन रहा। मोस्टली आज शोतों तो है एरो की क्लाउडी किया सो रहे हुआ मौसम और ठंडी हवाएं चलो कर दिन है ना जो बाइक कहीं चु कर दिन तीनों काफ़ी ठंडी हवा लगो कर दे उन्हें तो ठंडी हवाएं चलो कर दिन ठंड लगभग के शोतों सो महसूस भूना वे मुंजो लगता कि लगी बेगा जो कि मई तक या सो जैकेट वेयर कर ली है शोतों वेयर मतलब कि जैकेट किया सो सॉरी विंड चीटर किया सो मैं लाई लो है शोतों कजो कि थोड़ा करे ठंड रा माहौल बनी चुक रहा है इस समय धर्मशाला में शोतों। और आइए हबे आगाज़ तो जरूरी बंदा तो सुबह था हर कार्यक्रम मन जाकर प्यारा दे गीत वो चीज अच्छा आगाज़ वो चीज अच्छा कार्यक्रम रहता और क्या चिंता है ना। और नवरात्र हिन वैसे तो है ही तुसो मुबारक दी तुरी थी श्रोतों है ना लेकिन फिर भी अच्छा शैलपुत्री मातारा पहला नवरात्रा ता तुसो सब भी जो किया सो नवरात्रि रे भी बहुत बहुत वेड़ी गुंजन री पूरी टीम री तरफा तो होल टीम री तरफा तो किया सो नवरात्रि री शोतों बड़ी बड़ी मुबारक भी भून और ये नौ दिन किया सो तो है सब खुश रहन नौ दिन ही नौ भी खुश रहन लेकिन ये नौ दिन किया सो बहुत सारे परहेज बंदे जो इन दे कुछ गद्दी भाई मंदे बिन जो कुछ ना भी मंदे इन है ना लेकिन चलिए माता रे बार लगुरेन ता मातर बाल बार लगुरेन छोतों ता कार्यक्रम मंच ये गीत ना बहुत है पूछे ना सकता आगाज कार्यक्रम रहे से गीत असोगे कि असो जरूर भूना हा तुम सभी रिकॉल्स असोगे असो जरूर छोतों अटेंड भी करनी हिन लेकिन आइए जी हाँ जी बिल्कुल इस गीत तो आगे आज कर देना अपना इस कार्यक्रम रहा 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यही तो है सब बनी रहा रेडी गुंजन धर्मशाला सोगे और आरजे सचिन कपूर सोगे।

श्रोता एफएम ब्यान्ड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही हैं। तो चलिए श्रोताओं इंदे श्रोतागण के ना सो आसू हो गया वह कनेक्ट लगी पे भूना और आसू भी तुसू होगी कि सो श्रोता कनेक्ट करने हिन। हाँ तो सब श्रोता जरूर रहोगे कनेक्ट हो सकते हैं श्रोताओं 708-8-8-709 पर नंबर आक मुके फिर आऊँ रिपीट करना तू होगे 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं श्रोताओं अपने क्षेत्र जानकारी किया सोस होगी दस सकते हैं जानकारी साझा कर सकते हैं। खास ख्याल रहे जानकारी मित्रों साझा करने लाइक जरूर बुआ रेडियो मन दस ने लाइक किया सो जरूर बुआ। तो चलिए जी इंद श्रोतागण के ना सो अस वो भी कनेक्ट लगे हिंद पूना तो इंदे पहले श्रोता गेन सो आसो होगी कनेक्ट लगे श्रोता भूना और तुसु सब भी जो आक मौके फेरे किया सो शारदा नवरात्रे रे बड़ी बड़ी मुबारक भून श्रोतों आज पहला नवरात्रा है और माँ शैलपुत्री जी वे रूप माँ की आज सो है पहला नवरात्रा की श्रोतों सो मनाओ करते हैं है ना जी। माँ शैलपुत्री की श्रोतों सो नौ दुर्गा माँ प्रथम दुर्गा के सो मने गंदे हिंदू धर्म ग्रंथ रे अनुसार हूँ गल करूँ श्रोतों तो शारदीय और चित्र नवरात्रि रे पहले दिन किया सो माँ शैलपुत्री रही पूजा अर्चना और आराधना किया सो बंदे हा श्रोतों पर्वत राजा शैल हिमालय वे घर पुत्री रूप में किया सो जन्म लेने रे कारण यारा ना किया सो शैल पुत्री पे उतु श्रोतों बरहाल इन दे श्रोतागण कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बलून देन और कड़ी थो बलून देन नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार जी माफ करे जी तुंदी आवाज़ नहीं आई छू कर दी अतः डिसकनेक्ट करना पैना आसू तह दसू कर दे थी है ना जी श्रोतों इन्हें माता पार्वती सती और हेमवती वे नाथों भी किया सो जाने गंदा हा श्रोतों इन्हों पहचाने गंदा हा ता बहुत बहुत स्वागत है सभी हुंडे आए रख मौके फिर सभी श्रोतागण रहे जितने भी श्रोता सूगी बणु करते हैं जुड़ू करते हैं इंदा कोर श्रोता सूगी जुड़ना लगेन नमस्ते जी माफ करा श्रोतों सोई नंबर थो और शायद बार बार जुड़ना तो चाहू कर दें लेकिन फ़ोन किया सो यहाँ रे फ़ोन किया सो आसू होगी कनेक्ट ना वो चू कर दर्शो तुम तू सब भी होप्स हो कि पूजा अर्चना किया सो बेगा ज़रूर करी भूणे श्रोतों और संध्या काल में भी किया सो पूजा अर्चना करने हाँ तुसू नो डाउट है ना और इतों अगले श्रोता आसू होगी कनेक्टेड हिन पूछ दिन कौन बलून दिन और कड़ी थो बलून दिन नमस्ते जी हेलो हेलो तो चलिए श्रोतों कार्यक्रम मंच जानकारी भी चलते रहनी आज बरखा की सो बुझ गया कम से कम 8 बजे रे की श्रोतों सो बरखा की सो लग रही है और लगातार बरखा बुझू कर दी है ठेरे चलते की सो तापमान में गिरावट की श्रोतों सो आए हा और लगभग इस समय की सो 12 डिग्री सेल्सियस रे आसपास 12-15 डिग्री सेल्सियस रे आसपास किया सो इस समय धर्मशाला रा मौसम तापमान किया सो बन रहा है श्रोतों एग्जैक्टली जो तापमान है जो है तो सो दस हुआ तो आइए कार्यक्रम मंच थोड़ा करिए और हगू बढ़ दें श्रोतों और अन्य जानकारी के अनुसार तुसु सो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले बने रहे जुड़े रहे रेडियो गुंजन री यह गूंज सोगी और आसू सब भी सोगी नमस्ते धर्मशाला अगली जानकारी लेकर हाजिर बुंदन तुंदे वीडियो सेट में भी और फेसबुक रे माध्यम थो तुसु सोगी भी ताइए श्रोतों जिन तक रह है वापस इंदे हिन तिन तक रह है तिन तक श्रोतों आइए कार्यक्रम जो है आगो बढ़ंदे हिन और कार्यक्रम मन जब है अगले की तरीके नारी की एन सो तुसु सभी जो लेकर ही चल देन बने रहे जुड़े रहे रेडियो गुंजन रेसी गूंज सोगे

তো শ্রোতা হয়ে তুন্দা আপনা বেড়িগুঞ্জন ধরমশালা হর হাও তুন্দা আপনা আর চাই বেড়িয়ে চৌকি সচিন কাপু 91.2 মেগাহার্টজ পর তো সব বন্ড না সুসোকি তা আইয়া কার্যক্রম মঞ্চে হাগু বর্দাইন শ্রোতা ওর ইন্দে শ্রোতাগণ কেন সোস হোগি বিলকুল কানেক্ট কেন সো বুঝু করতে হিন তা কানেক্ট করতে হিন শ্রোতা ওর পুছ দেন কোন বল্লুন দেন ওর কড়ি থো বল্লু করতে হিন নমস্তে জি। चलिए फिलहाल कनेक्टिविटी किया सो वो ही नहीं है शो तुम तक बेहतरीन स्टोरी लेकर के सो है फिर हाजिर भुवन तुंदे सभी रे रेडियो सेट में और फेसबुक रे माध्यम तो तुंदे सभी रे फोन ना मंच शो तुम स्टोरी है शो तुम एक राजा और राजा बले जो सेरा सर्वेंट काम करता थो सेरा जो सहायक काम करता थो या फिर यह आम भाषा में बोलने के सेरा नौकर जो थो सो काम करता था यानी धोने रही ना मृत्यु के शोतो सोआ के टाइम पूछेगी और जी ये मृत्यु हुई तथी या इंजाओ के या सो धर्मराजे री कचहरी गाना पियो तड़ी कीचे करी के या सो धर्मराजे है बल्लू कि राजा सो की कि आज तो बाद गया तो सब काम किया सो करने नीडी और जो सेरा हेल्पर थो तसियो बल्लू कि तुझ कोई भी काम ना करना तो सिर्फ के सोहिड़ी आराम फरमाना हाँ तो धर्मराज है जहने अपना फैसला ही सुनाऊ शो तो तहने फिर राजे बोलू कि धर्मराजा जी एक दे फैसला तुंदा मैं तो थल्ले धरती माँ इतने काम करू रहे हैं इतना पाठ करू रहे इतना यज्ञ करू रहे हैं है ना इतना हवन करू रहे हैं और आऊँ तो राजा आऊँ मतलब की कर सकते तो है मंजो होगी या मैं इतना कुछ करूँ रहा है ना तो धर्मराजे बड़ा मुस्कुराए करी बोलो कि ये सब कुछ तय किया सो इतियो करूँ रहा कि तेरी जमाने मंज किया सो वाह वाह बोआ तेरी जीत बोआ और तो जो ही लगता था कि शायद है कहन तेरे ग्रह टालीन है ना तेरे ग्रह के सो टलेगान तो ये सब कुछ किया सो सोचता थो लेकिन तय कदी भी किया जो तुझो होगी जिंदगी रे इतने कीमती समय किया अपना दिंदा थो जो तुझो सोगी भुंदा थो तई सेरी कदर किया सो ना पाए यानी कि तई इसी इतने घट पैसे भी दिते है ना इतना तई इसी प्रताड़ित भी करो इतना तू इसी काम भी लेंदा थो है ना फिर भी इसी कभी तू अप्रिशिएट ना करता थो कभी तू इसी शाबाशी ना दिंदा थो कि हाँ भाई तई बड़ा अच्छा काम करो आज मेरा दिल खुश हो चुको तई अच्छा काम करो तू इसी कभी मतलब सेवा दिल ते कभी खुश ना रखो हमेशा इसी तू बलदा रहता थो कि तई तू नकम्मा तई कुछ ना करो ये काम और अच्छा होगी बुझ सकता थो ये बुझ सकता थो हमेशा किया सो तू इसी टोकता रहता थो रोकता रहता थो और पैसे भी किया सो बड़े घट दिंदा थो जो सेरी मेहनत बनती थी सो पैसे तू इसी ना दिंदा थो तई सजा किया तमें तो जो होना आया और दस जो सर्वेंट थो तस ही पूछो कि भाई तू दस बोला हाँ ये तो बुंदा थो लेकिन मैं फिर भी कदी किया सो राजे रा बुरा ना चाहो अपने माल का रह गया सो बुरा ना चाहो तब बोलो ते दिला थो बुरा ना चाहो ठे थे कि जो अब ही किया सो खराब खराब मुड़ो करता और इन ये दिला था कि सो तेरी कदी कदर ना करे तेरे बारे कदी सोचू ना और हमेशा तुझो किया सो टोकदा रोकदा रहता तो हमेशा तेरे बारे किया सो मतलब चिड़ दे किया सो रखता थो तो इसकी वजह सजा किया सो मोड़े हर्ष तो बड़ी छोटी देर स्टोरी है लेकिन कहानी रा सार के शो तो सो ये समझता हा कि कर्म हटी फिरी करी गल्ला के न सो कर्मा पर इन दिन शो तो आऊँ हमेशा बोलो बार बार बोलो कि दुई मंजिला ए त्राई मंजिला कोठी ए चौर मंजिला कोठी सो गिना गाणी ने ए लख रुपये री कार सो गिना गाणी ए करोड़ों रुपये री जमीन जायदाद किया ए सो गिना गाणी सिर्फ और सिर्फ सोगे गाना हाँ तो सो गाना तुंदे कर्म तुंदे तुहे कर्म कदे करूँ कमू रहे हिन सो सोगे गाना तुहे कितने मनू रहे भले करू रहे हिन शतों सो सोगे गाना हिन सो हमेशा किया सो खरा करा इवन कि जितने भी ओनर मुंजो हुनु कर दें तीनो भी बोलना चाहता कि जो तुसु भले इच्छु करदा शख्स अपना परिवार छड़ी करी तुसु ले कमाना इच्छु करदा सेरी वैल्यू किया आई थिंक तुसु अपने परिवार हथों थोड़ी करी ज़्यादा ज़रूर रखना चाहते कजो कि सो तुसु पर डिपेंड हा और तुसु वास्ते सो सो सब कुछ करू करदा भूना हा जो शायद सो अपने घर ने करदा वो है ना सो हमेशा किया
जितने भी ऑनर हूँ गर्दन तिया बस थोड़ा करे अपनी और थोड़ा करे बोलना चाहन कि प्यार किया सो हमेशा रख अपने सर्वेंट्स होगे अपने कुलीग्स होगे और जो तुसले काम करना इंदे या सीखना इंदे तिया सोगे प्यार हमेशा बनाए करे रखा। फिर हाजिर भूले कुछ एक प्यारी दी गल्ला ले करी और स्टोरी ले करी तुंदे अपने फेसबुक में और रेडियो सेट में। तो रेडियो सेट में तो असु हाजिर भूना ही भूना शोतों और इन दे श्रोतागण के अनुसार कॉल करो करते हैं। हेलो माफ करे शोतों आज न जाने कयो इन दे श्रोता असु की कनेक्ट भी बचू करते हैं लेकिन आवाज़ नहीं चू करते हैं। चलिए है तीन तेरे टेक्निकल चीज़ा जाओ चीज़ा रही और किया सो नज़र मारी लेंदे हैं और तो है सब असो की बन रहे थे बने रहे शो तो कार्यक्रम के असो ये चलते रहना हाँ। चलिए कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं श्रोतों और लेकर चल दे तू सब भी श्रोता जो इस प्यारे दे गीत किनारे बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सोगे और रेडी गुंजन री गूंज सोगे।

0: শত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর হেভেলি গুঞ্জন ধর্মশালা ওর আজ সচিন কাপুর তো সোগে মৌজুদ হা হোপ সো টেকনিক্যাল চিজ ঠিক বুঝে গিন আর আবে তো হে সব শ্রোতা লগাতার কল করে সকদেন কাজো কি মুঝে পতা গিনদে শ্রোতা গেন সো বড়ি দের থু ইন্তজার করু করদে থি কি কহনে ইনে কিয়া সো কল লগ দে আর কহনে ইনে কিয়া সো চিজা ঠিক বুন্দি হিন तो फिलहाल चीज अगेन सो ठीक है बुचगिन तुस सभी जरूर दसना चाहता हा तेंदे श्रोता गण के अनुस हो गया भाई कनेक्ट लगे बुना श्रोतों तो सब 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो की बोन बोन नमस्ते जी वेड़ी गुंजन मां स्वागत है। हेलो
1: हेलो जी।
0: हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते।
1: नमस्कार जी।
0: जी कौन बोल रहे हैं और करी तो रेडियो सेट रे आवाज धीमी करी दिया आऊं तो बोलनो कि अगर रेडियो सेट बक है तो है बेकुर इनता बिल्कुल जीरो कर दिया सो डबल होने कर दिया।
1: अच्छा भाई अगर इनका करी दिया
0: जी। जी कौन बोल रहे हैं और करी तो बोल रहे हैं
1: आऊं बोल रहा ज्ञान चंद।
0: अच्छा ज्ञान चंद जी हल्ले बिना आवाज ही चुगर दिया माफ करा प्लीज सास्ते करी दिया।
1: अच्छा अच्छा
0: जी ज्ञानचंद जी ता मौसम ता बड़ा सुहावना बजेगो आज
1: आज बर्क का दिन लाई था पूरा जा
0: दिन लाई था तो आर घर में ना हो बर्क है आज
1: तो आओ अरे सब छुट्टी हों दिया मानी जावे अंबर बल्दा भी छुट्टी कर लेता आज
0: बिल्कुल। ज्ञानचंद जी धर्मशाला री कस खूबसूरत जी जगह था कस खूबसूरत दे ग्रा था बल्लू कर देन तो है
1: थातरी
0: थातरी क्या बात है।
1: हां जी जी
0: ता ठंड किदे किदे है थातरी आज
1: ठंड दा जोता मा लगरो हीना पे गदा ना।
0: अच्छा
1: हां ही हो गदा थोड़ा ठंडा रे हो।
0: अच्छा
1: हां जी जी
0: क्या बात है थोड़ा थोड़ा पेव करदा मतलब
1: आवे तो यों तो समझ जा गेड दे
0: या तो यों दरा आज बुची को अगर हीना दीता दा
1: हां शुरुआत रखा तो आवे
0: है ना शुरुआत शुरुआत बुचेगी अबे
1: जी
0: जी क्या फरमाइश है तुम दे जनाब
1: बाजी ना भाई दे कोई मनी मिस दा।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर तुम दे फरमाइश पूरी कर ले है।
1: ठीक है जी धन्यवाद जी
0: धन्यवाद जी। तेंदे और भी श्रोता गण सो आस हो गए कनेक्ट बचू कर दें श्रोताओं तो बन रहे हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गई इन अगले श्रोता सो गई कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है। हेलो हाँ जी हेलो नमस्कार जी वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है तुंदा।
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: जी कौन बोल रहे और कड़ी थो बोल रहे
2: आओ सोनू बोल रहे।
0: हाँ जी कड़ी बोल रहे जी
2: योल थो।
0: अच्छा योल थो क्या ना जी तुंदा
2: सोनू देवी।
0: अच्छा जी सोनू देवी जी क्या हाल चाल ठीक ठाक
2: बस जी ठीक
0: करे करे लुगरेन।
2: हाँ जी
0: करे करे लुगरेन मिलो
2: करे लगना ही।
0: अच्छा सोनू जी क्या फरमाइश है तुम्हें।
2: ए जी किसे बैठाओ तेरा माली।
0: अच्छा
2: हाँ जी
0: ठीक है जी जरूर होने ले।
2: ठीक है
0: नमस्ते थैंक यू जी धन्यवाद
2: धन्यवाद।
0: श्रोतों बने रहे जुड़े रहे हर जे सचिन कपूर सोगी और इन द अगले श्रोता भी असोगी कनेक्टेड हैं। अभी तो सब सोचूं थे भूने कि रेडियो में जितने सारी कॉल्स ये तुंदे सामने है वीडियो रखो कर देन था। हेलो नमस्ते जी।
3: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते
3: सचिन जी मुबारक हो नाथ रही
0: हैं आज जी तुसो भी बड़ी बड़ी मुबारक हो
3: जी। हां जी हां जी गुंजर परिवार के सारे जी
0: धन्यवाद जी धन्यवाद।
3: ਸਚਿਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਅੱਛਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਕਣੀਆਂ ਦਾ।
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ
3: ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
0: ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ।

0: धन्यवाद।
1: ठीक है
0: धन्यवाद जी। तो ये सब हेरू भी कर दे हिन फेसबुक रे माध्यम तो और रेडियो रे माध्यम तो के जो हुनो भी कर दे इन शतों की इन दे श्रोता के इनके अंसो लगा तारा सूगी जुड़ दे हिन और आज के इस इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप रे जमाने में ट्विटर रे जमाने मंच भी किया सो रेडियो रा जमाना किया सो बरकरार है जनाब। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन जतिन जी कड़ी बल्लू देन बागनी थो जतिन जी का स्कूले पर देन तो है
1: जी
0: अच्छा ताज संडे थो जतिन जी कदे गो आज तुंदा दिन कदे गो आज
1: संडे आज छाड़े गो आज पूरा
0: सोई क्या बात है क्या बात है जतिन जी। संडे तो है मनाओ पूरा दिन बिस्तर सोई रहे
1: जी।
0: अच्छा शब्द बड़ा अच्छा बोलो तो है कि छेड़ गोवा। जतिन जी क्या फरमाइश है तुंदे
1: क्या बोल दे मुझे गाना सुना दे
0: सुन दे ना
1: क्या बोल दे केलम दीदा।
0: चलिए ठीक है जतिन जी जरूर होना ले तू है ना।
1: धन्यवाद
0: जी। तो चलिए शतो ये तो सिर्फ तुसु सब भी हो गया है शेयर करे कि आज के जमाने मंच भी किया सो रेडियो रा जमाना हा रेडियो रा जमाना फॉर एवर रा एवरग्रीन हाँ तुम्हारे सामने हेर लिया कि आज भी इतने सारे श्रोता के ना स्वस्थ जुड़ते हैं और खास कर इस गाद्य कार्यक्रम सोगी के ना सो जुड़ते हैं सो अपना प्यार आशीर्वाद इस कार्यक्रम मंच और इस नाचीज सचिन कपूर पर यही रखन तो है सब। तो आइया अब फरमाइश पूरी करने रह गया सो वक्त चले आहा समय गया सो चले आशो तो सभी में पहली फरमाइश है कि शिवजी रा गीत किया सो हुणना है ना जी। तो आइया हुणंदन भोले शंकर जी रा गीत का जो कि समय रहता है हेरुनिया कि समय गया सो बड़ा तेजी होगी दौड़ो करदा हा तइए भोले शंकर जी रहे गीत के सो है सब हुन दे नो तुसु सब भी हुनन दे भी हिन और फिर इतों बाद आके सो जरूर जो कॉल करु कर दिन तिन्यो कनेक्ट तु होगी जरूर कर ले और फरमाइश है कि सो जरूर पूरी कर ले सो तो मने रे जुड़ी रे आर जे सचिन कपूर सोगे रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने पन रे।

श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही समेरा थोड़े कर भाप और फरमाइश अगेन सो ज़्यादा ही न सुलेता आइए जी अगली फरमाइश की सो पूरी करते हैं। ज्वाला जी माता री फरमाइश करी थी किंदे श्रोते कुछ की तैयारी कुड़ी री फरमाइश थी था जरूर पूरी करनी है श्रोतों है ना। हर पेरेंट सोचता कि अपने बच्चे री इच्छाएं क्या ना सो पेरेंट पूरी करा चाहे कीमत की सो कुछ भी कहना पोहा श्रोतों पहले फरमाइश कर दें पूरी।

चलिए श्रोताओं तबे तुसु सभी थों इजाजत ले लेंदन कजु की फरमाइशा रा दौर थो और फरमाइशा ज़्यादा थी श्रोताओं तो अब तू को पता कि पूरा करते करते टाइम तो लगना है और होप सो इन द सब श्रोता कनेक्टिव हुए भूणे हिन। और चलिए एक मौके फिर तू सब भी जो कि आ सो आज नवरात्रि री पहली नवरात्रि री शैलपुत्री जी राज पहला नवरात्रा त्यारे रूप में है पहला नवरात्रा के सो मनंदे हिन तो तुसु सब भी जो एक मौके फिर किया सो नवरात्रि री ढेर शुभकामनाएं। हंसते रहे बसते रहे खुश रहे तंदुरुस्त रहे और नचते रहे। नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ, 11 अक्टूबर 2026। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए खुल रहे समृद्धि के नए द्वार, डिजिटल आधारभूत संरचना को किया जा रहा सुदृढ़, नशे के खिलाफ जनभागीदारी जरूरी, समाज के सहयोग से ही खत्म होगी चिट्टे की कुरीति। चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम, न्याय का वास्तविक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करना है, कानून और न्याय के प्रति सम्मान का भाव आवश्यक। सज गई शक्तिपीठ, रात को भी खुले रहेंगे मंदिरों के कपाट, सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से नजर। हिमाचल में 11,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी, आंगनवाड़ी वर्करों, वन मित्रों का मानदेय बढ़ा। एम्स में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। एआई के दौर में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है और उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के छात्रों, शिक्षण संस्थानों और रोजगार प्रदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर तकनीकी शिक्षा विभाग ने तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया है। ये अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है। तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल युवाओं और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु काम कर रहा है। ये पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जहां छात्र अपनी प्रोफाइल, अपनी कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्रों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर ऑनलाइन आवेदन तथा अपने प्लेसमेंट की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं। ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकता तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला

संपत्तियों को जब्त करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री इस गंभीर समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए सरकारी सेवा में कार्यरत पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने चिट्ठे से संबंधित सूचना देने वालों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्याय का अर्थ केवल न्यायिक आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निष्पक्षता, विवेकशीलता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को समुचित रूप से समझना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून और न्याय की वास्तविक सार्थकता इसी में निहित है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी न्याय मिलने की उम्मीद हो, जरूरतमंदों की आवाज सुनी जाए और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की सुरक्षा का विश्वास हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें। विद्यार्थियों की सफलता का आकलन केवल उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से भी किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के लिए हिमाचल के शक्तिपीठ सज चुके हैं। मां नैना देवी, छिन्नमस्तिका धाम, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, वज्रेश्वरी और चामुंडा मंदिर को भी विदेशी फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रविवार से यानी कि आज नौ दिन से मां के नौ रूपों का विशेष पूजन होगा। इस बार 19 अक्टूबर को अष्टमी, नवमी के अनुष्ठान हो सकेंगे। श्री नैना देवी मंदिर में मंदिर के कपाट 21 घंटे खुले रहेंगे। रात 12 से 2 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा मध्याह्न आरती के दौरान दोपहर 12 से 12:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। प्रतिदिन करीब 2.5 घंटे मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। शेष समय श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोलते हुए राज्य में अलग अलग श्रेणियों के 11,500 से अधिक पद भरने का फैसला लिया है। आंगनवाड़ी वर्करों, सहायिकाओं, वन मित्रों, स्पेशल पुलिस ऑफिसरों जैसे अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 100 और सरकारी CBSE स्कूलों में बदले जाएंगे। दिव्यांगता पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। चंबा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और बहुउद्देशीय कर्मियों के 4,090 जबकि CBSE स्कूलों में 4,800 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान होमगार्ड जवानों को शारीरिक परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले होमगार्ड जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए 15% पद आरक्षित और आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। इसके तहत करीब 15% पद होमगार्ड श्रेणी के लिए आरक्षित रहते हैं। इसके अलावा होमगार्ड जवानों को सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में आयु सीमा में भी राहत दी जाती है। मौजूदा भर्ती व्यवस्था में शारीरिक मानक परीक्षा के तहत ऊंचाई और शादी की माप, जबकि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद जैसी स्पर्धाएं पूरी करना अनिवार्य रहा है। एम्स बिलासपुर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। आने वाले समय में यहां ऑपरेशन थिएटर और कैथलैब स्थापित करने के साथ शिशु स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में वॉन मैरो ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी जैसे अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं भी शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एम्स बिलासपुर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिशु स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और यहां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके अलावा एक केंद्र एडवांस टेलीकेयर नेटवर्क के रूप में भी कार्य करेगा। एम्स प्रशासन की ओर से एम्स में शोध कार्यों को भी बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। गुड इवनिंग धर्मशाला, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खुश होंगे। अक्सर कहता रहता हूँ श्रोतों की खुश होना जो है वो बेहद ज़्यादा जो है वो बेहतरीन भी है और बेहद ज़्यादा जो है श्रोतों वो खुश रहना ठीक भी है, सेहत के लिए और अपनों के लिए भी। तो इस समय श्रोतों 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान है। और नमी की बात की जाए श्रोतों तो नमी इस समय जो है वो लगभग 80% के आसपास है। ह्यूमिडिटी जो है जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, 80% के आसपास इस समय ह्यूमिडिटी जो है वो बनी हुई है धर्मशाला में। अब आज तो संडे था तो मुझे लगता है संडे सबने एंजॉय किया होगा लेकिन सोकर क्योंकि मौसम सुबह से ही जो है वो इस तरह का बना हुआ है श्रोतों की मौसम सोने वाला ही था, है ना जी। इवन कि काफ़ी ठंड हो गई है और पहली बर्फबारी जो है वो दिख भी रही है हमें कि ये धौलाधार पर्वत जो श्रृंखलाएँ हैं, जो धौलाधार पर्वत हैं श्रोतों, इनमें जो है चोटियों में हल्की हल्की हिमपात जो है वो भी हो चुकी है। तो ये है धर्मशाला, इसको कहते हैं धर्मशाला। अभी अक्टूबर चला है और हिमपात शुरू है। तो चलिए जी, आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। बिल्कुल लाइव ये कार्यक्रम है आप सभी के रेडियो सेट पर। तो कार्यक्रम में श्रोतों जैसे कि हमने आगाज़ देखिए, आगाज़ जो है वो अपने अंदाज से होना चाहिए, है ना जी। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो होना चाहिए। तो आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश जो है वो की श्रोतों, आगाज़ कुछ इस प्रकार से किया और उसके बाद फिर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो चलिए, बहुत सी हमारे पास जो है वो श्रोतों बहुत से गीत हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ गीतों के साथ श्रोतों अन्य जानकारियां जो है वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो हमेशा करते रहते हैं और यूं ही करते भी रहेंगे श्रोतों। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आप सभी को लेके चलते हैं श्रोतों इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ। Thank you.

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए श्रोताओं, अब आपको लेके चलते हैं आज के विचार की ओर। जितना भी जीवन में भय, भ्रम और कलेश है श्रोताओं, उसका केवल एक ही कारण माना जाता है कि हमारा मन ये स्वीकार नहीं करता कि हमारी रक्षा करने के लिए भगवान है। जी बिल्कुल, अपने मन को मना लीजिए और भगवान जो है श्रोताओं वो हर जगह है। तो कोई भ्रम मत पालिए, कोई क्लेश मत पालिए, कोई भय जो है वो जीवन में मत रखिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो हर जगह है और हर वक्त उनकी नज़र हम पर है। श्रोतों, सीमित समय है हम सभी के पास, लेकिन उस सीमित समय का दायरा भी हमें नहीं पता। श्रोतों, समय को लेकर सब कुछ अनकहा और अनसुना सा ही है। पल पल जीवन की तस्वीर बदलती जाती है श्रोतों, और समय का बहाव, समय का जो बहाव है श्रोतों वो हमारी सोच से कई ज़्यादा तेज होता है। समय का प्रत्येक क्षण भी मूल्यवान होता है श्रोतों। बिल्कुल, तो ये आज का विचार श्रोतों। कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप सभी के भी दो दिल तो ज़रूर मिल रहे होंगे। जी बिल्कुल, कुमार शानू की आवाज़ में ये गीत है श्रोतों। हम सभी इस गीत को जो है वो सुनते हैं, दो दिल मिल रहे हैं। गीत के बोल हैं श्रोतों, और आइए इस प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं। आप सभी के वीडियो सेट पर 91.2 MHz पर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वेड़ी सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत से श्रोता जो हैं वो बिल्कुल गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ अश्रोतो जानकारियों का आनंद भी जो है और जानकारियों से रूबरू होना जो है ना श्रोतों वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अप टू डेट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है श्रोतों। वैसे सच हैं देवियों के दरबार और आज से ही होगी जय जयकार जी। बिल्कुल श्रोताओं जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, शारदीय नवरात्रे के लिए माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर प्रशासन देवी मंदिर ने जो है वो ब्रजेश्वरी देवी मंदिर प्रशासन पूरी तरह जो है वो तैयार था श्रोताओं। आज माँ के दरबार को रंग बिरंग फूलों व लाइटों से सजाया गया था श्रोताओं। नवरात्रों में आने वाले जितने भी अब जो आज पहुँचे हैं या आने वाले 9 दिनों में जितने भी श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना जो है वो ना करना पड़े इसके लिए मंदिर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है श्रोताओं। मंदिर अधिकारी प्रकाश चंद ठाकुर ने बताया कि नवरात्रि के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े इसलिए वे खुद नज़र बनाए रखेंगे। नवरात्रि के पहले दिन सुबह 5 बजे मंदिर खोल दिया जाएगा और अष्टमी और नवमी को मंदिर 3 बजे वह भीड़ को देखते हुए जो है वो मंदिर खोलने व बंद करने के समय में भी जो है वो बदलाव किया जा सकता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं तो बिल्कुल आप सभी भी ज़रूर जाएं और माँ का आशीर्वाद जो है वो ज़रूर लें। देखिए बताना चाहते हैं सुबह 5 बजे खुलेगा माता ब्रजेश्वरी का दरबार, 9 दिन होगा माँ चुमुंडा देवी का गुणगान श्रोताओं। ज्वालामुखी मंदिर में झंडा वसम से होगा हो चुका है आज का आगाज, शारदा नवरात्रों का आगाज। तो ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चला है आप सभी के रेडियो सेट पर। लेके चलेंगे श्रोताओं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिएगा जुड़े रहिएगा हमारे साथ वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए श्रोतों, अब वक्त हुआ है रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक हल्के से अंतराल का।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो चलिए गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का सफ़र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस जानकारी की ओर। शोतो स्कूल में आपदा से निपटने के गुर सिखा रहे हैं छात्रों को। शोतो कांगड़ा में समर्थ अभियान की शुरू 13 अक्टूबर का विशेष शोकआउट और मॉक ड्रोल जो है शोतो वो होगा आयोजन। जिला कांगड़ा के शैक्षणिक संस्थानों से आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक व्यापक अभियान का आगाज हो चुका है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम समर्थ के अंतर्गत जो है वो अक्टूबर 2026 के पूरे महीने भर विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। श्रोतों कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जिला के सभी वाजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक को इस संबंध में जो है वो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्रोतों इस वर्ष के आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का केंद्रीय विशेष विषय जो है वो घर से ही शुरू होती है। श्रोतों सुरक्षा जी बिल्कुल निर्धारित किया गया है कि इसी भावना के तहत जो है वो ज़िला के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन के आदेश अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में मुख्य रूप से 13 अक्टूबर को जो है वो शोकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया जाएगा। श्रोतों तो चलिए कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और बिल्कुल लाइव ये कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है। तो लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में थोड़ी सी आगे और सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। अब से ठीक 14 मिनट बाद जो है श्रोतो आज टीम इंडिया जो है वो पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार होगी वेस्ट इंडीज़ के साथ। जी बिल्कुल श्रोतो, अब आज देखना है कि किस और जो है वो मुकाबला जाता है। बड़ा रंगीन और बड़ा दिलचस्प ये आज का T20 रहेगा, क्योंकि पहला T20 जो है श्रोतो वो इंडिया ने जीता था और दूसरा T20 जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। शाई होप की टीम यानी कि वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो जीता था श्रोतो, और भारतीय गेंदबाजों ने 250 रन का विशाल स्कोर भी जो है वो भारतीय गेंदबाज नहीं उसका बचाव कर सके थे श्रोतो। जी बिल्कुल, भारत को अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बढ़त बनानी है तो आज तीसरे मुकाबले में जो है वो गेंदबाजी को बेहतर करना होगा और गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वो धार लानी होगी। जी बिल्कुल श्रोतो, और अगर धार आएगी तभी जो है वो जीत सकते हैं, वरना देखिए एक एक की बराबरी है। और अगर भारत ये मैच हार जाती है श्रोतो तो श्रृंखला तो नहीं जाएगी, क्योंकि T20 की श्रृंखला जो है वो 5 मैचों की है। तो पहला जो है वो भारतीय टीम जीती थी यानी कि हमारी भारत टीम, और दूसरा जो है वो वेस्ट इंडीज़ जीती है। आज तीसरा मुकाबला है तो देखते हैं किस ओर ये मुकाबला जाता है। कुछ ही देर में आप देखेंगे श्रोतो जियो सिनेमा में, जियो हॉटस्टार में। तो कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे श्रोताओं को हम जो है वो प्यारे प्यारे से गीतों के साथ भी जो है वो रूबरू करवाते रहें, साथ ही साथ श्रोताओं जानकारियों के साथ भी जो है वो हमारे श्रोता जो है वो बिल्कुल रूबरू होते रहें। तो चलिए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ।

शोतो FM बैंड 91.2 MHz पर हूँ और कार्यक्रम में हम आप तक जो है वो बिल्कुल यही कोशिश करेंगे कि जानकारियाँ जो हैं वो आप तक पहुँचे और साथ ही साथ गीत संगीत का आनंद जो है वो भी बिल्कुल लेना चाहिए शोतों। और अक्सर कहा जाता है ना, विचार और व्यवहार अगर इंसान के अच्छे हैं ना तो वो इंसान जो है वो शोतों। और अक्सर कहा जाता है ना, विचार और व्यवहार अगर इंसान के अच्छे हैं ना तो वो इंसान जो है वो दिल जीत लेता है। जहाँ भी वो इंसान जाएगा वो दिल ज़रूर जीत लेगा, लेकिन उसके व्यवहार में वो प्यार, उसके व्यवहार में वो शीतलपन, उसके व्यवहार में वो नमी, उसके व्यवहार में वो अपनापन जो है वो छलकना चाहिए। और विचार जो है वो सदैव श्रोताओं अच्छे रहने चाहिए, विचार जो है वो सदैव बेहतरीन रहने चाहिए श्रोताओं। हर कठिनाई में एक सबक जो है श्रोताओं वो ज़रूर छिपा होता है। कोई भी कठिनाई क्यों ना हो उसमें एक सबक जो है वो ज़रूर छिपा होता है। आपको ज़रूरत है उस सबक को, हाँ जी बिल्कुल, आपको ज़रूरत है उस सबक को ढूंढने की, उस सबक को हाँ जी तराशने की। तो चलिए लेके चलते हैं आप।

शुद्ध FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।

खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवा समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के भी हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। वेस्टइंडीज ने भारत के साथ इंदौर पहले ओवर में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक से बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर।

0: और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
0: स्मार्ट गर्ल,
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा,
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आइए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। सुक्खू सरकार ने अब तक की सबसे लंबी कैबिनेट बैठक में नौकरियों की झंडी लगा दी है। श्रोतों, मंत्रिमंडल ने 14,000 नई नौकरियों को मंजूरी दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने अलग अलग विभागों में विभिन्न श्रेणियों के इन हजारों पदों को भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर के 4,090 पद भरे जाएंगे और साथ ही साथ श्रोतों बताते हैं कि जिसमें पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर और बहुउद्देश्य कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्रोतों तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ।
4: ये कैसी लड़की है
5: इसका मैं

शोधो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर है। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। शोतों जेल में पति को चिट्टा लेकर पहुंची पत्नी। जी बिल्कुल शोतों, सब जेल हमीरपुर में अंडर ट्रायल कैदी के लिए जो है वो उसकी पत्नी चिट्टा लेकर पहुंच गई। शोतों उसने जींस की जेब में जो है वो कम मात्रा में चिट्टा छिपा रखा था। पुलिस निरीक्षण के दौरान जींस से चिट्टा बरामद हुआ। शोतों पुलिस ने मादक पदार्थों को अपने कब्जे में लिया शोतों तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जेल में सामग्री लेकर पहुंचने वाले कैदियों के तमीरदारों के सामान का सही ढंग से निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। इसी का नतीजा है श्रोतों की पुलिस ने एक जींस से कुछ मात्रा में चिट्टा बरामद किया। अंडर ट्रायल कैदी संजीव कुमार जेल में है। इसकी पत्नी इसके लिए कुछ सामान लेकर उप कारागार हमीरपुर पहुंची थी। श्रोतों यहां पर वह उसके लिए सामान छोड़कर चली गई। जब छोड़े गए सामान की जांच की गई तो जींस में चिट्टा बरामद हुआ। श्रोतों पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। नशे के विरुद्ध चलाए गए पुलिस के अभियान के तहत सटीक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया कि अंडर ट्रायल कैदी के लिए उसकी पत्नी सामान लेकर आई थी, उस कारागार में छोड़ी गई जींस से चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच गहनता से कर रही है। श्रोतों आइए कार्यक्रम को हम भी गहनता से आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बाखूबी बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ हमारे साथ हैं।

तो लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। गीत संगीत यूं ही चलते रहेंगे, बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन किसी गूंज के साथ।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। तो श्रोतो अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। श्रोतो मिलते हैं आप सभी से अंतर

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं

0: चालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा,
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
3: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
5: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई,
5: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
6: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
0: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।

0: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल,
0: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
0: मामा,
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
0: अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
1: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
4: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
5: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
4: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
5: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम आप सभी बखूबी सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने वीडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। तो आइए श्रोताओं, इस अंतराल के बाद आप सीधा ले चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। आप सभी यूं ही बने रहिएगा और इंजॉय करते रहिएगा आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। हाँ बिल्कुल, बर्फबारी हुई है श्रोताओं, तो थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिए क्योंकि अब एकदम से ठंड जो है वो बढ़ गई है श्रोताओं, तो जैकेट वेयर करने का समय आई थिंक आ ही चुका है धर्मशाला में। चलिए लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत को, कीजिए आप सभी इंजॉय।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कुल्लू जिले के पतलीकूहल में आज जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
2: पिछले चार साल में कांग्रेस किस बात के लिए जानी गई? कांग्रेस जानी गई है कुशासन के लिए, कांग्रेस जानी गई है कु

0: के लिए, कांग्रेस जानी गई है कुनीति के लिए और कांग्रेस जानी गई है कुव्यवस्था के लिए। इनकी कुनीति है, बताओ इन्होंने आते ही स्कूल बंद किए कि नहीं किए, अस्पताल बंद किए कि नहीं किए, जो विकास के काम कर चल रहे थे उसको रोका कि नहीं रोका। इनकी ये कुनीति का नतीजा है, ये कुप्रबंधन है, इनको प्रबंध करने नहीं आता।
1: नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध करवाई लेकिन राज्य सरकार इसका समय पर उपयोग नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है।
0: देश को विकसित बनाने का नाम नरेंद्र मोदी और उनको ताकत देने का काम आपका और हमारा है, इसको हमको ध्यान दे। यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आ गया। कभी सोचा था कि 70 लाख की जनसंख्या को ये चीजें मिलेंगी? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद होता, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बंगलुरु होता, मुंबई होता, कभी सोचा था कि हमको यहाँ पर मिलेगा? लेकिन वो मोदी जी ने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी हर तरीके से आपको युक्त करने का प्रयास किया गया है।
1: उन्होंने राज्य सरकार को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा में ध्यान देने की सलाह दी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल के उपयोग से समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। शिमला के समीप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता का आकलन उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया।
2: आज आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं, आज से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तो यह केवल शुरुआत है, जीवन में कई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है। कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है, कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन ही आपको अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करेगी। जीवन में असफलताएं भी मिलती है लेकिन उनसे घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने स्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना राज्य सरकार का लक्ष्य है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की देवला पंचायत के घराट नाला में आज एक मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सड़कों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देवला, खटनोल और मझीवड़ पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य जारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में निचार उपमंडल के कंडार गांव के 47 विस्थापित परिवारों को भूमि के मालिकाना पट्टे वितरित किए। उन्होंने कहा कि कंडार गांव को संपर्क सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कर ली गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
4: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
3: जी डॉक्टर साहब,
4: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
5: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन के शेष समाचारों में, सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश अब स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। एनआईटी हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ वर्ष 2026 के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को आधुनिक तकनीक, AI, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आगे आना होगा। अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जैम और डिजिटल इंडिया पहल के। प्रधानमंत्री के अनुसार सार्वजनिक खरीद में डिजिटल पारदर्शिता और तकनीकी एकीकरण में शासन प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया गया है।
8: जो भी सरकार में कोई चीज सप्लाई करना चाहता है, छोटी छोटी चीजें भेजना चाहता है, बेचना चाहता है, वो उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। वो क्या क्वालिटी का माल है उसके पास, वो उसमें लिख करके रख सकता है, कितने में वो बेचेगा वो लिख सकता है। और सरकार के डिपार्टमेंट को कंपलसरी है कि उन्होंने उस पर विजिट करना होगा, देखना होगा कि ये सप्लाई करने वाले क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज न करते हुए सस्ते में कौन पहुंचाता है, और फिर उसको ऑर्डर करना होता है। और इसके कारण बिचौलिए खत्म हो गए, सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई, इंटरफेस नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सब होता है। तो ई जेम के अंदर जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं, सरकार के सभी डिपार्टमेंट उसको देखते रहते हैं, बीच में बिचौलिए नहीं होने के कारण चीजें बहुत सस्ती मिलती है।
1: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर के अणु में छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में करीब 800 से अधिक छात्राएं 10 स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि नादौन में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इस स्टेडियम में 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का प्रावधान है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। ऐसे में सुबह से ही शक्तिपीठों सहित धार्मिक स्थलों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु शक्तिपीठों में पहुंच रहे हैं। कांगड़ा जिले में नवरात्र के दौरान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिले के प्रसिद्ध माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में नवरात्र मेले का उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने शुभारंभ किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नवरात्र के चलते मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम, प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिले में ताजा बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। जिले में शिंकुला टाप पर बर्फबारी में फंसे पर्यटकों व बाइकर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उधर पर्यटन नगरी मनाली की ऊंची चोटियों और रोहतांग दर्रे पर भी हल्का हिमपात हुआ। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा व चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है। घुमारवी में संस्कार सोसाइटी ने आज युवा प्रोत्साहन व सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर ग्रामीण व स्कूली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में भारतीय महिला कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रीति ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संस्कार सोसाइटी के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने कहा कि संस्था नशे जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ लगातार जागरूकता बढ़ा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को प्रभावित करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर दिया बल। शारदीय नवरात्र के पहले दिन शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में आई गिरावट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
9: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब श्रोता वक्त आ गया है आप सभी से अलविदा लेने का। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आप सभी जो है वो कार्यक्रम में बने हुए हैं और कार्यक्रम में सभी आर्टिस्ट को जो है वो इतना प्यार देते हैं। तो चलिए जाते जाते यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए और हर किसी का भला अच्छा ज़रूर करें।
10: जिला कल्याण अधिकारी।

0: जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

0: चालू
1: बात माने ना तो करवा ले।
0: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
1: अरे वाह, नौकरी लग गई
0: जी,
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
0: अरे काका भी है।
1: अच्छा चल, मैं
0: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
0: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
5: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
0: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
6: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
6: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
7: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
0: जी।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आ

0: अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल,
0: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। OTP और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
0: मामा,
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
4: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ 11 अक्टूबर 2026। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए खुल रहे समृद्धि के नए द्वार, डिजिटल आधारभूत संरचना को किया जा रहा सुदृढ़, नशे के खिलाफ जनभागीदारी जरूरी, समाज के सहयोग से ही खत्म होगी चिट्टे की कुरीति। चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। न्याय का वास्तविक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करना है। कानून और न्याय के प्रति सम्मान का भाव आवश्यक। सज गई शक्तिपीठ, रात को भी खुले रहेंगे मंदिरों के कपाट, सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से नजर। हिमाचल में 11,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी, आंगनवाड़ी वर्करों, वन मित्रों का मानदेय बढ़ा। एम्स में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। एआई के दौर में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है और उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के छात्रों, शिक्षण संस्थानों और रोजगार प्रदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर तकनीकी शिक्षा विभाग ने तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया है। ये अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है। तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल युवाओं और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु काम कर रहा है। ये पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जहां छात्र अपनी प्रोफाइल, अपनी कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्रों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर ऑनलाइन आवेदन तथा अपने प्लेसमेंट की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं। ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकता तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में चिट्टे के दुष्प्रभावों, इसकी रोकथाम और नशे के खिलाफ सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की संपत्तियों को जब्त करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री इस गंभीर समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए सरकारी सेवा में कार्यरत पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने चिट्टे से संबंधित सूचना देने वालों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्याय का अर्थ केवल न्यायिक आदेशों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें निष्पक्षता, विवेकशीलता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को समुचित रूप से समझना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून और न्याय की वास्तविक सार्थकता इसी में निहित है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी न्याय मिलने की उम्मीद हो, जरूरतमंदों की आवाज सुनी जाए और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की सुरक्षा का विश्वास हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें। विद्यार्थियों की सफलता का आकलन केवल उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से भी किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के लिए हिमाचल के शक्तिपीठ सज चुके हैं। माँ नैना देवी, छिन्नमस्तिका धाम, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, वज्रेश्वरी और चामुंडा मंदिर को भी विदेशी फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रविवार से यानी कि आज 9 दिन

राज्य में अलग अलग श्रेणियों के 11,500 से अधिक पद भरने का फैसला लिया है। आंगनवाड़ी वर्करों, सहायिकाओं, वन मित्रों, स्पेशल पुलिस ऑफिसरों जैसे अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 100 और सरकारी CBSE स्कूलों में बदले जाएंगे। दिव्यांगता पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। चंबा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और बहुउद्देशीय कर्मियों के 4,090 जबकि CBSE स्कूलों में 4,800 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान होमगार्ड जवानों को शारीरिक परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले होमगार्ड जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए 15% पद आरक्षित और आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। इसके तहत करीब 15% पद होमगार्ड श्रेणी के लिए आरक्षित रहते हैं। इसके अलावा होमगार्ड जवानों को सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में आयु सीमा में भी राहत दी जाती है। मौजूदा भर्ती व्यवस्था में शारीरिक मानक परीक्षा के तहत ऊंचाई और शादी की माप जबकि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद जैसी स्पर्धाएं पूरी करना अनिवार्य रहा है। एम्स बिलासपुर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। आने वाले समय में यहां ऑपरेशन थिएटर और कैथलैब स्थापित करने के साथ शिशु स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में वन मैरो ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी जैसे अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं भी शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एम्स बिलासपुर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिशु स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और यहां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके अलावा एक केंद्र एडवांस टेलीकेयर नेटवर्क के रूप में भी कार्य करेगा। एम्स प्रशासन की ओर से एम्स में शोध कार्यों को भी बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

0: अगर शालू बात माने ना तो करवा ले।
1: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
2: अरे वाह, नौकरी लग गई
1: जी,
2: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
1: अरे काका भी है।
2: अच्छा चल,
1: काका लड्डू खाओ।
3: अरे बेटा मुबारक हो, काका की नौकरी
1: बैंक में। काका
4: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
5: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
1: क्या
6: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
1: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
7: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
5: क्यों भाई,
7: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
5: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे। अरे
8: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
1: जी।
9: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
10: वही असली तरक्की।
9: एक कदम स्वच्छता की ओर।
11: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आते।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, वो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
2: याद है ना, नो शेयरिंग।
3: मामा,
4: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
5: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
6: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
7: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
8: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
9: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
8: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
9: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है।
1: हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए।
0: अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो।
2: जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भी? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं।

0: अगर शालू बात माने ना तो करवा ले।
1: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
0: अरे वाह, नौकरी लग गई
1: जी।
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
1: अरे काका भी है।
0: अच्छा चल,
1: काका लड्डू खाओ।
2: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
1: बैंक में काका।
3: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
4: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
5: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
1: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
6: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
4: क्यों भाई?
6: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
4: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
7: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
1: जी।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की।
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, न्यू शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते,

0: आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
1: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
2: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
3: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
4: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
3: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
4: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूँ आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना लेकर। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की आराधना के इन पवित्र दिनों में आज हम पहुँच गए हैं नवरात्रि के दूसरे दिन, जो समर्पित है माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को। तो आज आप सभी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और समर्पित है आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आरती के साथ।

का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना। और नवरात्रि के दूसरे दिन आज हम पूजा कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में